0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हर झण आवाज रेडिओ मान आवाज रेडिओ मान 88.4 नेटवर्क मंगरवळूस तासला पारा दगशान मलमती पर रमना चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडिओ मान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जवान रंग अमन अमन।

0: हाजी भाई सलाम अलैकुम विक्रम भाई, वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट द इश्मा तमाम प्रोडक्ट रा सर मिलावी कि सुकम पंदू तो राजी के ना पंदू द इश्मा प्रोडक्ट उन्होंने डग दे खो जमा द खो ग्रोर चिकम दे के ना वकास द सर हम जमा द इश्मा प्रोडक्ट मिलावी की। हाँ सलाम अलैकुम इकराम भाई, कल में अटेंड का ना प्रोग्राम के सबागुलियम द बनू ना बस द कल टाइम खुला खोरे बस उसमें मैसेज शामिल को सही था। अस्सलाम वालेकुम, हमारे तरफ से आप सब सुनने वालों को दुआ सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके इज्जत सेहत घर और बच्चों में बरकत अता दे। अच्छा माशाल्लाह कुर्बान दे उर्दू ना
1: शुरू। हम गरीबों के
0: आमीन आमीन डेर ज्यादा मनाना दुआ हो दुआ भी बस चो कमर उलीगी सही
1: था।
0: खैर मामद सेब द उमराबाद धनो कलीना दा मैसेज रा लेके रे सुकम समूंगा आवाज हो रही उमराबाद धनो कली के खैर मामद भाई सर समूंगा इश मतमाम प्रोडक्ट मिला भी गेम। अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जान सिदरा नेमरा द बुनीर में विक्रम भाई प्रोग्राम दे उरु जबरदस्त है मौसम पशांत ता मोहतरम वाले दे तमारा तरफ ना सलाम वालेकुम सलाम। मौसम खिस्ता दे यारा खिस्ता देखा ना शुक्री ना दपका राशन गर्मी ने नहीं मैं इकराम भाई द टांग ना टांग खलक वोले ना याद अवे वैसे खुद हर वक्त याद हूँ आउत में ना याद अवे याद हूँ मखा। सलाम अलैकुम इकराम भाई दुआ सलाम दर तकुम अज हलीम आयमा द कंडरो मर्दान ना वेलकम वेलकम इकराम भाई जान डेर मुदबाद इकराम भाई जस्तासो दवजिना अज परुन त्रोर करा ला नड़मा इकराम भाई द कोर एड्रेस रा मैसेज के रावली का कहना अकाल दर तकवले नशमा कहना और जका ची माँ चरता काल कड़े न दे के ना सही दे के
1: ना
0: तो चरता प्रदो कर हमने तले नो काल लेने का प्रदो कर सके ची भी
1: ऐसा
0: गप लगूं जमा खो रे हा मेरा ना सदफ दल तंबर ना डी रजियात मरा ना सदफ खुशाल हो सही। सलाम अलैकुम इकराम भाई सोहेल अफरीदे यमा वेलकम सोहेल अफरीदी। सलाम अलैकुम इकराम भाई संग खैर ड्राइवर वाले जर्मीना यमा द उमर जैना उस स्कूल नाराला मत दोनों पवख देना खबर चिताड़ो तेली नहीं बाबूजी सिंह में रेडियो लगा वालों तासो आवाज में और दुबई दुआ सलामी कबूल करी वालेकुम सलाम।

हाँ जी 12:42 मिनट से बुजुर्ग था सुनान सब चुकुम दी काल जाला मा करम अगेन बाद की चुकुम दे बस ता दागा प्रोडक्ट बजदर तशेम औ दागा प्रोडक्ट बजदर तशेम या वो पूरे बने लगे बने खबर है ओम को सही ना।

और इधन की सरंगी उम्मीद रखी बिल्कुल ठीक ठाक है। हफ्तावार प्रोग्राम के मुलाकात की से नीम गड़ी माजी करके और प्रोग्राम की मुझे तुझे मिल गया ठीक तर उस ना तर 7 बजे पूर्वी यानी कि 2 घंटे सही मंडे ने दिशा मंडे ने दे और इधन की हर प्रोग्राम के बार हर शिरकत हस्तल ऐसी शिरकत कबल ऐसी टेलीफोन मवा दे ला रहे यानी कॉल दे ला रहे 0927291292 अंग्रेजा पर खबर रही हो दुश्मन वैसे ना दे अंग्रेजों ने बचो तो बुदा का मसला खो बेखी नी गा ना कोर के बुदा खबर है खो बेखी न बेता और दल ऐसी न भी सुख भी तैयारी छे बचाए में सीधा गा ना कोई इंग्लिश के डेर कमजोर है दशा न अंग्रेजों ने बची हुई देना खलोस विशा अक्सर वो तो देखा था भी चिद्दा का खबर है चलिए जी या हो टीचर सीधा गा ना अगर प्रिंस तो ये बचा दे इंग्लिश के डेर कमजोर है ना।

और या जी पेरेंट्स सीधे के नाखा बची तभी आई छी इंग्लिश के कमजोर है बच्चा हमेशा अंग्रेजों ने बचाई तो बुदा बसला बेखी ना वे सौरे दुन के साथ शिरकत कवला ऐसे टेलीफोन में मादी ला रहे एस एम एस ला रहे एस एम एस से पूरा मोबाइल मैसेज क्रिएट ऑप्शन डाउनलोड से आर के बोली के कैपिटल के आर के आगे ना पास पोवेर के यूज पे आगे ना पास तू से खुश शांति नो मिला के नो आगे ना पास जना बिल्कुल लिटो से पैगाम शेयर टा पास अंदर है खुश शांति खबर है हाँ मिस्टर सेंड का वाला है वो 8583 मने यानी के 8583 मने यानी के 8583 मने और यानी के 8583 मने रोसाई रोसाई जी बिल्कुल पलमो रेडियो स्टेशन दा है पलमो प्रोग्राम बनाई दी और पलमो भी जी बिल्कुल रुनाई दी यानी के हर जगह मुखबर रुनाई दी बिलाज जज बिलाज दड़क

हाँ जी गर्मी छिता इंतहाई जो यानी टेम्परेचर से दा देर जो पल जुनू सर डेर ख्यास होता है कलम खुद जरूरी चार नहीं कोर नही बार माओ बजे देर साख मेर दा देर सख्त है गर्मी दा इंतहाई सड़ी तई नुकसान वेर कई बदी मौसम के उबच दिए डेर जो इस्तेमाल हुआ है और कोशिश कवाए चि ठंडा मशरूबात छिदे अगर यूज कवाए इस्तेमाल हुआ है इच्छा न लश्की पके परेस कवाए तुम रहा ची गरम अशिया दी अगे न पके परेस कवाए और परेठे छिदे के ना सभी ने परेस दवाए दा चिस्त चिदा यानी सीने से चिदा साख नुकसान एर कई दगा से गर्मी भी और पोसना जी परेठे भी और ब्याह चाय भी नो बिल्कुल चिस्त चिदा है ना पश्तो के वित्तीय

प्रोग्राम के ओके से जी कीमती कीमती खबरें और प्रोग्राम के झना बिल्कुल छली सी वानी मसंदर है और प्रोग्राम के शमली तो से काज प्रोग्राम के शमली से तो से एसएमएस जना बिल्कुल वो सीजन चिता है वो दोनों ना नन हम बल भी आए बाबू रो रो दादा आहा जी करेक्ट सिटी के मैन सिटी के यानी के तहसील करेक्ट तहसील मैन सिटी तहसील रोड देवा रोड में वदा दा ढेर ढेर वे तम मुबारक छप एडवांस के जी बिल्कुल कदी की रोड से मैं आगा संदरे ना चला वाला गाना ब्याह पे भी आई छे राज भाई मौसरा दिस जोता है वो कौन रुन्ना बलर देखो दे वाली वो बल रोड तो संदरे चला वाले वाह जी बिल्कुल रोजाना तो तब हाँ नन संदरे चली जी दे वो दे वाला हाँ तो तब हाँ दा वो दे डेढ़ मुबारक सा हाँ जना बिल्कुल संदरे में चाचा उदू ने भी या अर्जुन के हफ्ते के चाचा उदू ने भी चलो तब एडवांस के डेढ़ मुबारक सा अल्लाह दाऊ की चला अर्जुन की जिंदगी मुदा हाँ डेरा बेहतरीन है खुशगवार अभी मिस्टर खपा के दो गाने का वैसा

बिल्कुल काल वाला मालगर काल वाला अवरेदन के लश्कर के रुतबे ठुका काल सरफ तैसा यही कना चराज भाई वाराज भाई हाँ जी बिल्कुल वोरवा हुई आया जी समझते ला रहे ऐसे भाई जाने चिलश के खुडलू ने खावे तपले का यही चीता उधर तब दबल दबल था क्या ना लश की ढूलू ने प्ले का हाय वे तपले वे का वेले ना जी ढूलू ने बखावे तपले सी

0: ओके जी 0927291292 देलारे कहल छि आगे तरफ देर सा फर्स्ट कलर बगुर छि मिसा काल देलारे सुख दे लेट्स सी फर्स्ट कलर ऑफ द शो लकी कलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: जी जनाब सुख रोजा खबर कही थी किम जोइना अच्छा सारा फ्राम बनू सारा को प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम स्टडी माशी सारा कैसी है सारा सरंगे तो शादो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आपको कैसे लग रहा है आवाज से कैसे लग रहा है प्रोग्राम से कैसे लग रहा है कि मेरी सेहत ठीक है या नहीं ठीक है
1: सेहत तो बिल्कुल अच्छी है क्योंकि जैसे ढोल प्ले कर रहे हो जैसे हम किसी शादी में आए
0: नो शादी है ना आपने सुना नहीं है शादी है ना तो शादी के लिए प्ले किया था
1: हाँ बहुत जबरदस्त ढोल थे
0: आजकल जो है ना शादियों का सीजन चल रहा है और यकीनन यकीनन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दो अपने मतलब के दोस्त समझो भाई समझो ना उनकी चाहे परसों एक की थी आज एक की है
1: अच्छा फिर आप नहीं गए थे
0: नहीं मैं कहाँ जाऊँ मैं अपने इतने सुनने वाले और दुन की है लाखों की तादाद से और दुन की है करोड़ों की तादाद से और दुन की है उनके लिए आऊँ प्रोग्राम के लिए वेट करते हैं ना तो मैं उनके दिल कैसे तोड़ूं
1: लेकिन जो दोस्त थे उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए
0: हर दोस्त तो एक होता है ना लेकिन और दुन की बहुत सारे होते हैं और पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं तो इसलिए ये मैं जरूरी समझता हूँ
1: हाँ ये तो है अभी कल मेरा पेपर था लेकिन मैंने सोचा चलो एक घंटे से कुछ नहीं होता तो सुन लेती हूँ
0: अच्छा सही नहीं ये तो गलत बात है ना एक घंटे से बहुत कुछ होता है
1: मेरा सुबह से
0: वो फ्यूचर वो है ना वो फ्यूचर का सवाल है ठीक है
1: हाँ सुबह से पढ़ रही थी तो पढ़ने का स्टेमिना नहीं है
0: नहीं इतना लगातार भी नहीं पढ़ना चाहिए फिर वो दिमाग पे ना लोड आता है ठीक है तो बीच में जो है ना वक्फा जरूरी है
1: हाँ थोड़ा सा सबक रहता था टॉपिक रहते थे तो मैंने सोचा कि चलो इसको जल्दी कवर करते हैं फिर बाद में थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे रात को और आपको और मेरे लिए एक पश्तो का सॉन्ग प्ले करोगे
0: फरमाइशी प्रोग्राम है नहीं ये
1: अगले शो में
0: अच्छा अगले में ओके जी इस तरह ठीक है अगले शो में बताए जी
1: मासरा
0: मकेना
1: जमा बशे जुदा सीमा
0: अच्छा मासरा मकेना जमा बशे जदा सीमा अच्छा पवाजदा
1: वो तो नहीं मालूम
0: वो नहीं मालूम चलो वो हम मालूम कर लेंगे ठीक है
1: हाँ, और
0: वैसे आपने तालीम की बात की आपने पेपर की बात की जब भी कोई बात करता है तो मुझे बहुत अफसोस वो हो जाती है काश मैं भी पढ़ लेता
1: नहीं पढ़े
0: बस क्या करूं नहीं मैं तो स्कूल के वो क्या कहते हैं माठ में पानी भी नहीं पिया है वो स्कूल का माठ जानती हो ना
1: नहीं आप तो मजाक करते हैं आप पढ़े लिखे हैं
0: क्यों मजाक करता हूं मैं बहुत अफसोस करता हूं काश मैं भी पढ़ लिख जाता
1: नहीं
0: काश मैं भी पढ़ लिख जाता वो कुछ इस तरह है उर्दू में काश मैं भी पढ़ लिख जाता तो मैं भी नवाब होता इस तरह कुछ है ना
1: नहीं ऐसे तो नहीं है पढ़ाई लिखे इसके अलावा भी देखो आप इतनी कामयाब इंसान बन गए हो आप इतना अच्छे इंसान तो बन गए हो जरूरी तो नहीं है कि कोई इंसान पढ़े
0: आपको कैसे पता कि मैं कामयाब इंसान हूँ
1: ये जो हम आपका शो सुनते हैं ये आपकी कामयाबी है अगर आप अच्छे नहीं होते तो हम आपका शो कब सुनते
0: नहीं वो तो ठीक है लेकिन मेरे ख्याल में तो ये कामयाब इंसान नहीं है
1: अच्छा फिर क्या है
0: कामयाब इंसान तो वो है जिससे माँ बाप राजी हो और अल्लाह राजी हो
1: तो इंशाल्लाह जरूर आप मैं और अबू भी राजी ही होंगे और अल्लाह भी राजी होगा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: हेलो एक छोटी सी वो है पोइट्री है वो आपको सुनाती हूँ फिर गाना है
0: सही जी सुनाए
1: तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करते
0: तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करते जी जी जी ढेर सो
1: दिल के बाजार में बैठे है हसारा करते
0: ओए होए दिल के बाजार में बैठे है हसारा करते ढेर सो
1: आते जाते है कई रंग मेरे चेहरे पर लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करते
0: वाह जी वाह
1: मैं वो दरिया हूँ के

0: खरबोंद बुनर है जिसकी अच्छा ही या मुश्किल किनारा करके
1: दे सो।
0: चलो जी सबको दुआएं सलाम।
1: ओके जी
0: स्पेशल दुआ करना है सब ने आपने करना है दुआ।
1: ओके जी और जाते जाते बिल्कुल ये आपके लिए यहाँ किसी को भी कुछ हस्ब आरजू न मिला।
0: वाह
1: यहाँ किसी को भी कुछ हस्ब आरजू न मिला किसी को हम न मिले और हमें तू न मिला ठीक है। ओके जी बाय बाय ठाठा देखा कब लियो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग जी अल्लाह हाफिज़
2: हर तरफ तक खुशहाले दियो पंडु नदी
1: बाय बाय ठाठा सरफ रमन हूं देखा कब लियो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच
2: पक्की जोड़ कड़े दे मल करू कना बोले मैं फल सलामत फिर बात
1: गुरु नेक्स्ट कलर से मिसकाल दिला रे सोखते।

0: ওকে জি গরু বনেশ খালা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি জিজাকিল্লাহ আল্লাহ পাক কেরাম দে শিগড়ি যা খবাকো টিকটক তো সেই শে হে এ চোকরু সা খবর কি কিম জে না
1: রাবি হওয়ারকম সে
0: নকরতিয়া রাবিয়া জি রাবিয়া তা প্রোগ্রাম কে রেডিও ওয়েলকাম হরকলে ও দেমো খোর সরঙ্গে দো শাদো হ্যাঁ বড়
1: আলহামদুলিল্লাহ
0: জি খোর কে মে প্রোগ্রাম হরবি
1: हां बे प्रोग्राम में दिसल ओरवे
0: अच्छा टोल प्रोग्राम ने ओरवे हां
1: काल देने मिले वे
0: अच्छा काल ना मिले वे छे ना एमओ एमओ काल ना दशा दे रेडियो काल दशा अच्छा
1: काल ना मिले वे कब प्रोग्राम ने हो दे ओरवे
0: जी खुरजाने यो जहान में ने कौन छिनन मुकाल मिला शो बिल्कुल दगा खबर है छदा बार बार उरीदुन के खदा गिला कभी खबर है कभी छे काल ना मिले वे जी टेलीफोन सेट यो दा है उरीदुन की माशाल्लाह देर दी अल्लाह पाक दे देर लरी नो दे वजे कलर देर वी नो काल मने लश्की खुरी खुरी मेहनत घोड़ी
1: बिल्कुल बे
0: جی رابیہ پروگرام سرور ہوئی خیر پروگرام خیر سلام جی جی آئینہ تھا
1: منا ہلتا
0: اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ خوش ہو رہے تھے عزت منش ہے جی

0: तो जनाब बिल्कुल चार नकाल ड्राप सी ग्यारह तो ट्राई कवल से सिफर 27 291 292 दिला रहे गुरु बुनेक्स कलर ची मिश्रा काल दिला रहे सोखती जी अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल मो हाउस दल कहना यो बल काल हाँ काट सलो ड्राप सलो और नेटवर्क इशू बुवी नमोदा हमारा वकड़ा लाख तोरी दिली हुई ब्या काल कवल से जी
1: बिल्कुल
0: लखा छे नेटवर्क दा खबर शाह वन लगे दा शाह दा बैटरी छे डीजे वाला बस कल कल दास खुशहाल ही चला यकीन दागा रुण वाला है वो अधू नहीं चाहिए यकीन चीते खुश है खबर ऐसा
1: बिल्कुल मुझे डेर खुश मुतरफ दादा हाँ मुबारक की जिंदगी डेर खुश है
0: ख्वाश गुड़ू जना बिल्कुल दिगर में हवाले सर आनंद अगर मुझे मौजू जुड़ू शाह अगर मैं हवाले सर प्रोग्राम की तो खबर के गर्मी डेर ज्यादा था कहना तब सभी आए और इधन को तब सभी आए खुश आंदे पैगाम
1: राज भाई जब फल दे मुड़ा समय चिकन दे लेसन चिकन दिया वो तब जदा हुआ है खुदा रात दस चार हजार मो कोर की ने भी न बार पसे वो जो खास चार मने भी आगे पसे मादरूम हो चिकन
0: जी जी रखी
1: बिल्कुल राज भाई दा खबर दो छे मो दा खबर ओ करना कि घर में ना दिन ना बच गई ना दा का किन
0: ओए होए देर छोड़ दे सारे की बो ओके ओके जी रखीबो डेर मनना रखीबो दा खबर रखीब खटक कवला चावरीदन को अगर खबर है कवला छे गर्मी डेर जियो ता दे गर्मी ले हर चीज डेर जियो ता या हो मजीद मखते पता ना लगे टोल डेर डेर दो गाने में लगभग दे खैर रखमत एक्चुअली भरू ना वकी सख्त जरूरत है ना और पदी गर्मा खे दो से चा बे मतलब आ बे मकसद आ बे गरज आ आ से वजते नगा ले कोर्ना बार मगर जैसा

0: तो शोर वो रेडियो में करा मौत वे लिखे आज रास के हाँ प्रोग्राम जरी उसारी था निमगढ़ मासिका ठीक तर 7 बजे पूरे वहीं छला जरी उसारी में गुरु बनेक्स काला तुम सकाल लीला रे सोखती अस्सलाम वालेकुम जी जनाब शुक्र से खबर की किम जना अच्छा सानिया दे करक ना सानिया दे प्रोग्राम के डेढ़ वेलकम हर कल है सानिया सरंगे तो शाद हो अच्छा तो शाये सहे सानिया प्रोग्राम सावर में सहे दाय मो आवाज से दा मतलब ठीक तरीके से दे रसी
1: तेर रसी करा
0: करा कले कले सब की
1: लस्की
0: हरुप सरंगे हरुप सी मतलब हाय हाय आय हाय दा से लगे दलाए से लगा सानिया खुरा कह में खबर है नशले का वाय हाय हाय कार काट करो ओके जी थैंक यू सो वेरी मच गुरु बनेक्स कलर चीम साथ काले लारे सोक थी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब सो कैसा खबर की किम जना
1: महेश करक ना
0: छोटी मैं बस तड़े मां से ठीक ही है जबल को ठीक ठाक फिर फाट अलावा करम शिगड़े प्रोग्राम और वे ये
1: सर न मना तो चले जवे रे के वे खबर काल की कड़ा का मैं और
0: जा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ब्या खुद इस सने दे वरे दली
1: जवे दे तो मोरा काल या विलेज की जो बैंक के वाला नोर ना
0: हो अच्छा सही सही दाबर तो वे जे प्रोग्राम के बच्चा रुसर शामिल आवे
1: गरीबों ने पूरे बिजली
0: अच्छा सही है बिल्कुल ठीक है यो जहान मना दिखाओ देना इलावा प्रोग्राम की चाहता दुआ सलाम
1: जी भाई दुआ सलाम जी रेहान सा गुल लेते चले लेते जी है ना तब गोल का आएंगे तो रुशहान से सनम से मनाए था मोहरेन था गुलशन था लाइबनूर था फरिशता
0: वापस जर के नीचे जर के वो रोसा हो पाता है ना छिपे जिठे मन तो चेता है ब्रेक पो खोले मो सराह सा प्रोग्राम बुजरी सरी हुई ठीक तर 7 बजे पर इंशाल्लाह ओ दीदी ब्रेक ना पास जाते से बहुजमात के जर वंदे शामिल है सही था
2: इस वक्त शुरू द कमर्शियल ब्रेक मुंसर हुसैन इस वक्त शुरू द कमर्शियल अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का हमारे साथ रहिए अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का हमारे साथ रहिए अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का हमारे साथ रहिए अब वक्त है

0: पहले की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: खबर को द लोब द मैदान वी या द पार्लियमान, मसल को इलाकाई वी या कामी, खबर को स्तासु वी या स्तासु द चापेरियाल, रसूबा स्तासु गक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोली शे तासु मौजुआती इल्मी और सेंसी मालूमात पा अखबारी नड़े के द अखपल कोरबा अहमदजार सरा सिर्फ और सिर्फ पा अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुन रंग अमन।

ओके जी, नाउ टाइम ऑफ एसएमएस। भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी, दिस इज मी वन एंड ओनली है योर फैन क्यूट रुशी खान वाचिवा। आप जी जनाब जी वेलकम हमारे गुलगुल एंड बुलबुल मोहतरम खसूसी किदरदान नजवले शेस्ता डायमंड एंड गोल्ड गुलगुल एंड बुलबुल स्वीट भाई जानी को वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम निगड़ी माजीगर खे रेडियो मन खरे खे डेट वेलकम हर कले स्टडी मैसेज दे जात्र को बोलो यो जहान मिलना क्यूट रुशी खानी स्वीट सिस्टर जाने। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वंस अगेन मैं क्यूट रुशी खान स्वीट भाई जाने। हम अपने स्वीट भाई जानी को हुसन वालों में शुमार नहीं करते बल्कि हमारी स्वीट भाई जानी का अखलाक ही काफी है दिल जीतने के लिए। बंडल ऑफ थैंक्स क्यों वेरी वेरी मच। के हमारी सिस्टर्स हमें इस काबिल समझती हैं। वंस अगेन जी रडेरा शुक्रिया मेहरबानी तशक्कुर। ओके जी नेक्स्ट इट्स मी लाडली जीमल फ्राम कर सलाम राजू अरे है वाजी वाह दागा से सरंग ये बिल्कुल पुरांगा तोर यहाँ आओ बस याद से यहाँ तबियत में ठीक था पेट फाट यहाँ एक जोड़ यहाँ कुछ कुछ हाल यहाँ कुछ तबियत है यहाँ उम्मीद ला रहा खुल और रिदुन की वहाँ ठीक ठाक भी और लाड लीजिए मत तो से बहुत ठीक हुआ लापाक मुझे ठीक लगे जतमन उसे कदरमन उसे भाई चीज सरंग ये जी तक तोर ये सर भाई चीज सदा वफा था नूर था ये नहीं था ये अच्छा आपको प्रोग्राम में आने पर ओके जी खुश आमदेद कहते हैं राज भाई रकीबो शुक्रिया मनना झुक झुक जियो सदा खुश रहो तो था प्रोग्राम के डेटा वेलकम हर कल लाए रखे खाना यो जहान मनना। थैंक यू नेक्स्ट वंस अगेन मैं क्यूट रुशी खान स्वीट भाई जाने फॉर यू खैर द कसर पस्तर को दे नवीनम खैर द कसर सर पस्तर को दे नवीनम खुदा जड़ो पस्तर को दे हर वक्त याद आऊ माड़े रक्षले टफा डे रसा क्यूट रुशी खान यो जहान मनना। नेक्स्ट रकीब खटाक वैसे घर के मसले अच्छा घर के मसले बेटों के चेहरों की रौनक छीन लेते हैं हर बेटा मोहब्बत का हरा नहीं होता। ओके जी नेक्स्ट वन सेकेंड रखी बहुत भाई जैसे अब अपने आपको साफ रखना निसफ ईमान नहीं है अपनी सोच और दिल को भी साफ रखना चाहिए। डेयर डीप वर्ड्स रखी बो मनना खत देखा है वन सेकेंड रखी बहुत दूसरों की जिंदगी पर तनकीद करना आसान है बल्कि

अपना किरदार बेहतर बनाना असल बहादुरी है। खबर वंस अगेन रखी, वो जो जितना तुम्हारा है तुम भी इसकी इतनी ही हो, जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसकी इतनी ही रहो, ज्यादा दिल की गुलामी इज्जत की नीलामी हो जाती है। वाह वाह, रकीब खटाक जी बिल्कुल एसएमएस सिलसिला जारी था, तो से एसएमएस शामिल हुआ शेरों ने बहुत इनर्श हैं बिल्कुल टेमरो सर याश था कुछ अखाई समय सर तक वाले शाय 8583 वंदी शामिल हो जी बिल्कुल मी क्यों टू जिगान स्वीट भाई जानी वेलकम टू द शो वाचे वाह मिर्जा ता हो ता गुलगुल एंड बुलबुल या आई एम रैली रैली मैसी यू स्वीट भाई जानी और गुलगुल एंड बुलबुल जी थैंक यू सो वेरी मच मैसेज का बोलो इज्जत रो का बोलो ये जहान मनना वन सेकेंड रखे बो वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, वफादार भी था बेदार भी और अदाकार भी जी देखे शक न इसका है वक्त से दा इंसान था डेढ़ डेढ़ चाह वे सही हाँ जी की मोहल को दे वक्त न फायदा खुश है तले तले कामयाब दी की मोहल को दे वक्त का दरकड़ा ये यकीनी अगो हल को कदर शवदा हाँ की मोहल को वक्त फजुल से खड़ा था वक्त से अमल कर ध्यान रहे खड़े आग खलक चीजे आगा डेर दे दुनिया पो दी रेस के दे दुनिया पो दे मंडो के दे दुनिया पो दी दौड़ के बिल्कुल पीछे रह गए रस्तों पर दिशे विदिशा रखी बोयो जहान मनना।

नेक्स्ट अच्छे में सच बोलकर अगले के दिल में अपने लिए नफरत फायदा कर सकता हूँ लेकिन झूठ बोलकर मोहब्बत नहीं। वाचिवा रखे बो देर क्षले अल्फाज देर क्षले फिक्रे देर शेर पोजड़ा पोरे यो जहान मनना। थैंक यू सो वेरी वेरी मच।

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक जहां मौसीकी मालूमात इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं रेडियो मन 88.4 करक आपकी आवाज आपका एहसास
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो देर किस बात की हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ राबता नंबर 0345-93-32-580
3: कारोबार हो या फरमाए मसाइल का हल हो या सेहत का राज बैक टू बैक हो या खबरें रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग अमन
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो देर किस बात की हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ राबता नंबर 0345-93-32-580
4: السلام علیکم حگو اوریدن کو تاسو اوری ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
5: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ
6: खबर को द लोबुद मैदान भी यादा पार्लियमान मसला को इलाकाई भी या कामी خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کول شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

जी बिल्कुल सही प्रोग्राम बारीकी बा सवर दी गा मखी बा मतलब पसीनो तुसो टूल मालूमा देर की ठीक छो लगा सुमरा हम मीनवाल बा बिल्कुल वेल छे युद्धा से प्रोग्राम तो शुरू कही गा नो डेर खन बो की नो मौज सही था इंशाल्लाह प्रोग्राम बा बिल्कुल शुरू की बिल्कुल प्रोग्राम बा चिनंद प्रोग्राम के सो गुशे नहीं हम मौसरा जिकुम बल प्रेजेंटर दाई गा आ हाँ बिल्कुल प्रोग्राम की बेखबर हो किर सरा खजी बिल्कुल प्रोग्राम से गपशप लगी प्रोग्राम बा ठीक तर 12 बजे पर भी और दिन अलवा द प्रोग्राम चुकम दे तो उसे बिल्कुल हर दिन मंगल पौराजो और दाइश है ठीक छो यू अमो प्रोग्राम चुकम दे बुध पौराज है वो तो उसे बिल्कुल रोए दो हर बुध पौरा दशपे 10 ना 12 बजे पर उस दा प्रोग्राम हाँ तो बिल्कुल और दाइश है दशपे 10 ना 12 बजे पर दा प्रोग्राम तो उसे और दाइश है हर मंगल पौराज हर मंगल पर तुस दा प्रोग्राम बिल्कुल और दाइश है सही दो पदे प्रोग्राम की तुस हर तलाई से शिरकत कवाले से काल पत्र बाने काल कवाले से 0927-291-292 बाने प्रोग्राम से कॉल कवाले से ठीक छो पीडीसीएल नंबर जो गुमदाय बिल्कुल रेडी दाय देने लवा मैसेज कवाले से मैसेज तरीका हाँ दे डेरा सोना मोबाइल की वलोट से राइट या क्रिएट ऑप्शन था जब तक तुम मैसेज लिखे आगे से तब लोट से देखिए बोली के गठ खरूफ से आर ए के जी के हाँ कल हाँ वो लिखे ब्याव अवेर के स्पेस ने बाद खपल नाम खपल इलाके नाम ब्यावे सिंड के पो 85831 यानी 85-83 वाने बिल्कुल सेंड के ठीक छो खजी बिल्कुल प्रोग्राम के सही बात नहीं हमारा कॉल भी बिल्कुल शामिल भी तो बिल्कुल पीडीसी नंबर बने चुकम दी कॉल भी दावे बिल्कुल शामिल भी प्रोग्राम की बिल्कुल गपशप लगी जी खजी प्रोग्राम की बिल्कुल गपशप चुकम दे खा लगी जी प्रोग्राम के सब गोशे बिल्कुल नहीं हो मौसर प्रोग्राम के मौजूद दाए खजी

0: वबल आ गई खबर है मैनेजर से
1: जी
0: इवा खबर है बहुत
1: अच्छा जी
0: सही शुवा यो हो मिशे ये इवार इस प्रोग्राम तैयार हो
1: सही
0: है क्योंकि दागा शो ची दादा कंबाइंड शुरू शुवा सही दा
1: जी
0: यो हो बता चका सफा सफा खबर है बकाए
1: अच्छा जी बिल्कुल
0: दे जड़ा दे तला खबर है बकाए अब जब मुदा मुदा पछतने वे ता संदर्भ वाला गी
1: सा बिल्कुल
0: किता ना वर्क शव ये खोना दो
1: ना कोरा दस भाई तक का संदर्भ होश है ना
0: हां
1: जजी के मने भी तो पति प्रोग्राम की ओसर गोड़ो
0: मनना यो जहान मनना
1: शेर तो नहीं बिल्कुल कन्ने में लभी सब इधर तर गोड़ो
0: अच्छा छे ना मेरे को
1: बिल्कुल बस यही कहना चाहिए तू सिर्फ हुए ना नो बिल्कुल सब डायरेक्ट देता रहा
0: सही

0: जी बिल्कुल दाबी बिशरी ने उर्दू पश्तो मैक्स सांगलाशे
1: जी बिल्कुल
0: मैक्स तो से और वजी
1: जी बिल्कुल दे दासी दे मैक्स सांग तो से और वही
0: और दे सरा सरे सांग बोर होगा ना मैनेजर से वहाँ अच्छा वेर तो वेली दे वैसे आंख के रो पड़ी न कोई पैगाम आया
1: अच्छा
0: आंख के रो पड़ी न कोई पैगाम आया भूल गए वो हमें न कोई सलाम आया और मेरी तन्हाई मुझसे बोली अब बता
1: अच्छा
0: मेरी तन्हाई मुझसे बोली अब बता अब मेरे सिवा कौन तेरे काम आया
1: वाह
0: वाह जी वाह वाह वाह।

0: हाँ जी बिल्कुल तो से बोर वही दगा संदरा बीबी शीरी ने जेड़े को लेके ना
1: दी सिंगर ते पश्तो खान मेरे कभी ना शा
0: अच्छा
1: ए
0: शा शा शा सही दा खबर हो सही तो खैर बदल बेगी
1: ना ना दगा वसगा वा दगा वसगा वा वसगा उर्दू लिसनर दे होता है वसगा
0: जी सही नो
1: या बेबिया बला बबिया वाला गई
0: हम
1: सरंगे दा पश्तो
0: अच्छा दगा

Ok, chị, vay cái nào. Chị, assalamualaikum. Soy SMS cho mẹ lo. Welcome. King of the... Achha, my heart. Tarek Aziz Wazir. Gulgul and Bulbul Raske. Gab Shef. Mamu Singh. Taso. Dwar. And bundle of thanks. My best manager and Raz Mamu. Che Tose. Gada show start gada. May he be great Malika. Okay, Zi, Walaikum Salam. Thank you so very much. Great Malika. Thank you so very much. Dora di Zatru Kavolo. Dumra hai. Che Balbo. Che Tose. छोला और दुन को फरमाइश बने रिक्वेस्ट बने गाड़ा शो में सीधा शुरू करा उम्मीद लरा तो से बखान मजा ते अखले नेक्स्ट में क्यूटर जी खान तारिक भाई एंड स्वीट भाई जानी वेलकम वेलकम पोदा सोरो महफिल के जी गुल गुल एंड बुलबुल एंड सुपर डुपर कोई साम खान ये वकड़ा जी दगा से शफीड बैक गुड थैंक यू सो वेरी मच भाई जी सलाम तारिक भाई मना है आज आपको सुन रही हूँ जी वालेकुम सलाम जी तारिक भाई को आपका सलाम पहुंच गया जी नेक्स्ट भाई जी माई बेस्ट राज मामू

0: हाँ कैसे हो रिदन को तो से एसएमएस सीधे आप भाषा में लवो और इन अलावा आदि प्रोग्राम के नन पहले प्रोग्राम देखा ना बस तो सर मुझे विच इंट्रोडक्शन वको एंट्रो वको और व्याई करना मैनेजर से हम बिल्कुल रोक लो मौसरे मौजूद दा मैनेजर से बावरिदुन की व्याई करना चिदा नोम चिदाई करना राज भाई दा वो तो इशा कल आई वी शाह वी चिदा वो तो चिकिम दा गाया शाही वी शाह तस्सा व्याई दे बारे के
1: जी बिल्कुल हम मैसेज मोगो तो
0: हाँ
1: चिकम मैस
0: जी जी प्रोग्राम के तो सर है मिर्जा तो से मलगरती आ चिदाई करना हाँ वो न मालूम वक्त पड़ी वी शाह ओके
1: ना बिल्कुल 12 बजे पर है
0: एक इदेशी किदेशी 1 बजे पर है खशी बात है ना लगे
1: हम
0: पहले प्रोग्राम दाशा नन मैनेजर से वगा देर ख्वाश ख्वाश दाशा अल्लाह पकते दा से ख्वाश लरी वही ची राज मामो ने मो तो पे यशवी ओके जी मैसेज शामिल वा सर जी ओ तर राज

ओके जी, मैसेज आ कर हैकिंग बॉम जेड, ओके बेबी शेरिना, थैंक यू सो वेरी मच, मैं क्यूट रुचि खान, तारिक भाई एंड स्वीट भाई जानी फॉर यू, दिन को रात से पहले चांद को, सितारों से पहले आप दोनों को, सबसे पहले सितारों, अच्छा है स्टोरी महफिल शो मुबारक हो, मुबारक से तुस्त मरवाड़े दशा जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो इस एम एस सीधे आप शामिल हो, ये सो इस एम एस सीधा आगामी शामिल को चेतो सदा यकीन हुई छे एस एम एस पटोल शामिल हुई शिशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह के चेतोल एस एम एस पर शामिल है जी, और प्रोग्राम की गपशप हुई और देर कीमती खबरें वही शाम।

वाजी वाव छे फार राज मामो जी जी एरशाद डलाय वही छे द टोल करक छे पे खैस्ता शो द टोल करक छे पे खैस्ता शो दरास हमदर्द पके इसी कदमुना मी ग्रेट मलिका थैंक यू सो वेरी मच ग्रेट मलिका थैंक यू सो वेरी मच दुमरे वाक्षले टफा देर शाह पजड़ा पोरे यो जहान मनना है सलाम टू हिफ्सा इल्मा आयना हुरेन गुलशान रोशी खान और सारा आयशा सोनिया जोहा आयशा खटका जो मैं तारा खान एंड ऑल लिसनर था मी ग्रेट मलिका ओके जी अब प्रोग्राम रुसर और भी कहना तो से सलूम ने हवा पूछा पोवर से ओका नूर भी खा भारी कैसा छी तारिक मामू रोगला है था सुपर डुपर तारिक रोगला है राज मामू रोगला है खबर कैसा

हाँ जी बिल्कुल सही संदरा हम और भाई बिल्कुल नराई नराई बरोम हम मुख्तलिफ इलाके से शुरू दाएं जरूर द मैसेज हैं शामिल को अच्छा जी बिल्कुल मैसेज कर दिया रुशिहान वही कहना चाहिए तारिक भाई एंड स्वीट भाई जानी देशो नुमा हो स्टोरी में फेल दा हो और भाई सही सही एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल शी जका छे गुलगुल एंड बुलबुल सही सही आई सुपर डुपर बिल्कुल बिल्कुल यही अच्छा जी डेरा मन थैंक यू मैसेज के लिए डेरा डेरा मन ना प्रोग्राम से मैसेज होगा रोशिहान थैंक यू साहिब वजीर मैसेज कर देवे जी सईद अलाम का गाना प्ले का हाजी सईद ठीक इंशाल्लाह प्ले वशी डेरा मन जिंच के बाद गाना हम ऑलरेडी प्ले हकला डेरा मन ब्याह हम यो जहार मन प्रोग्राम से मैसेज होगा सॉरी जलाल मैसेज कर देवी सलाम टू मनत खचक रोशिहान तरहान डी जे पुपो डॉक्टर इजहान आयशा हटक इलमा होमेमा जुमेमा सुमेमा और अदीन वजीर वजीर सोमो अरीबा एंड जारा सोनिहान छुट्टी मड़वा छुट्टी गुलाई और फोहान मलक मसई और मैसेज कर बम बमला डेरा मरना थैंक यू और भैया इस्लाम वेली दी जोहा गुल था वलीजा गुल हामना अशना और दीन लवा नीला बिठनी नूर उजाला मरवत नदिया बहार शाजियर मनी फाइका फातमा कैनात दुआ गुल और दीना इलावा छे हजी सही था छोल तो बिल्कुल सलाम दे वरस डेरा मन ना

0: ходи. सही ಹದಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಗ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ರ ಪುರುಷ್ರಗ್ ಬರಾನ್ ಬರೀಗಿ ಅಡಂಕದ ಮುನ ಮೆಯದಿಗಿ ಜನಾನ್ ಪಹೆಸ್ನ ರಜಿಕಿಗಿ ಖಂಡ ತವೀಸ್ ಪೋ ಝೈ ಮುಲಾ ಪೋ ಗಡ ಕ್ರಮ ಗ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಡೇರ ಮರನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೇರ ಮರನ ವಿಚ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಮೈನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ತಾರಿಕ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯ್ ಜರ್ನಿ ಮೇಕ್ ಯೂ ಟು ರಿಹಾನ್ ಬಾ ಜಿ ಮುಬಾರಕ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ದಾ ಹೋ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಕೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುಜೆ ಪತಾ ಚಲಾ ಕಿ ಯೇ ये तो गुलगुल एंड बुलबुल होगा.
1: थैंक यू सो वेरी मच.
0: देर मनना थैंक यू मैसेज के बोले यो जहान बनना चे प्रोग्राम से मैसेज हो क्यों विश सलाम टू राज ब्रदर वेलकम सरंगिये दिस मीज लासा देर मनना
1: को चेक चाक वालेकुम सलाम शेव अल्हम्दुलिल्लाह.
0: थैंक यू मैसेज के बोले विश अस्सलाम वालेकुम वेलकम किंग ऑफ रेडियो मन 88.4 करक राज के एंड तारिक वजीर एंड गुलगुल एंड बुलबुल राज भाई.
1: ओके से यो जहान में तो ना इज्जत रो कवले मिशता इज्जत मन से कदर मन से
0: अवे जी गपशपी मामो
1: ए गपशपी मामो ठीक है
0: संग ए तो से द्वारा एंड बंडल ऑफ थिंग्स मी बेस्ट मैनेजर इन राज मामो चितो से गाड़ा शो स्टार्ट करा मैं हैप्पी ग्रेड मालिका.
1: ओके जी ठीक ठाक वैसे तो सरंग है मिस्से उषा
0: जी
1: जी जी
0: डेर मनना थैंक यू
1: शुक्रिया
0: मैसेज कवले यो जहान मरना
1: और दे तुम्हारा फीडबैक रो कवले शा
0: जी डेर मनना देने लवा विचे रोशखान मैसेज के तारिक भाई फीड बज जानी विचे जाजा मैनेजर मैनेजर तो ना हो लगा
1: मिस्ट्री
0: वैसे लगे जी बिया माइक ना बंद सोए हो आवाज ना जी बिल्कुल
1: दासे चल रहा है मैनेजर से जैसे में शामिल की कहना है आखिर के वो माइक को लावी दाए बतरानुम हो के जे और इधन को बिल्कुल दी प्रोग्राम के भी तरानुम हो के शिशा
0: जी
1: हर प्रोग्राम के पुतो सयो तरानुम चिदा के जशा
0: सही
1: का खैर भी
0: बिल्कुल
1: आसी बिल्कुल तो सरबो युवाक्षले गंदे संदर या गजल चिदा तरानुम के जे
0: बिल्कुल आसी दे जी
1: दाब दीदी प्रोग्राम हिसाबिशा
0: बिल्कुल सही
1: मैनेजर से चिदा बहुत तरानुम कवि पखपल खुश आवाज सुरीली मीठी प्यारी आवाज में
0: जी सही
1: स्वीट वॉइस ऑफ सुपर टूपर थारे का
0: जी
1: जी आपको सुनने को मिलेगा जी बिल्कुल मंगल की रात 10 से 12 बजे तक
0: 12 बजे तक बिल्कुल आसी दे. अच्छा तकरीबन डियर किसान पर स्ट्रीमिंग बने हाँ प्रोग्राम जी www.omanradio.com बिल्कुल वेरी वंडरफुल मैसद के जामा कुर्बान विच नजर है माशी राज मामो अरीना तोता और तारिक ता सलाम देर के भी और सेंडिंग शो में ग्रेड मलिका.
1: थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मनना
0: जी थैंक यू मैसेज के वाले विच तारिक दीप जी